0: मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
3: ಸಮಯ 7:30 ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕೇಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರತ್ನಮಾಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ KS ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಈ ಗೀತೆ.

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಸುತ್ತುವ ತಲುಪುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೇಮದ ನಾದ ಇದು. 11:59:59
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो.
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ. एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी. पेमेंट लिंक भी भेजा है.
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है. धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं.
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो. सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें.
2: समझ गया.
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब हो अपनों का साथ तो मजबूत रहते हैं हाथ, जीवन की हर कठिन राह आसान लगने लगती है जब परिवार, मित्र और शुभ चिंतकों का साथ मिलता है। अपने केवल सुख के साथी नहीं होते, बल्कि कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा संबल बनते हैं। उनका विश्वास, स्नेह और प्रोत्साहन हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब मन निराश होता है, तब अपनों का एक भरोसेमंद हाथ हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में आत्मविश्वास का संचार करता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से सजोकर रखना चाहिए, क्योंकि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए देखें आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे अपनी बातें करने वाली है। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली।
1: हाँ जी, हेलो सहेली से बोल रहे हैं। मैं नीतू बोल रही हूँ, जोधपुर से मैडम।
0: अच्छा, आप जोधपुर से बोल रहे हैं, यानी कि राजस्थान से, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: आपने बताया जोधपुर से रहती हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, पहले तो ये बताइए हमें।
1: मैम जोधपुर का तो मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है।
0: मिर्ची बड़ा यानी बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत पसंद है।
1: और मैडम बारिश के मौसम में आप खाओगे ना, जब वहाँ पे खड़े खड़े, तो आप सोचोगे एक नहीं मैं चार खा लूं। हमारे
0: ये तो होता है, ये तो होता है। तो और ये तो चलिए खाने की चीज हो गई, वहाँ पे देखने लायक कौन सी चीज है?
1: मैम आप आइए मंडोर उद्यान देखिए, यहाँ का हमारे अच्छा पैलेस देखिए, उम्मीद भवन जिसको बोलते हैं।
0: अच्छा हाँ, उम्मीद भवन, बहुत सुना है इसके बारे में।
1: बहुत से सेलिब्रिटीज की यहाँ पे शादियाँ ऑर्गेनाइज होती है।
0: तब तो आपके जोधपुर में खूब चहल पहल होती रहती होगी सेलिब्रिटीज की, तो अच्छा लगता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा नया एयरपोर्ट बनवाया गया है, रिनोवेशन हुआ है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो यानी आने वाली ऐसी जगह है जिसको देखना चाहिए जाके जरूर, है ना?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में मैम मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, भाई है, भाभी है और मेरे दो भतीजियां हैं।
0: अरे वाह, तब तो भतीजियों के साथ खूब मस्ती चलती होगी, है ना?
1: बिल्कुल, उनका नाम ले।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: एक बड़ी वाली है हर्षिता और छोटी वाली है पुलकिता।
0: अरे
1: पुलकिता का आज 7th month का बर्थडे है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयां छोटी सी पुलकिता को, बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। हर्षिता का भी और पुलकिता का भी।
1: बहुत दादा ने नाम रखे हैं, हर्षिता नाम रखा था।
0: हाँ जी,
1: तब सेकंड हुई है।
0: अच्छा,
1: बोले पुलकिता रखेंगे
0: वही मतलब वही है, हर्ष उत्तरा पुलकित हो ना। अच्छा, बहुत अच्छा नाम रखा है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, ये बताइए मुझे, आपके शौक क्या है?
1: मैं तो मैं घर का काम करती हूँ
0: घर के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक शौक होता है ना कि हम ये करें, इसमें हमें बहुत मन लगता है करने में, वो कौन सा काम है? वो डांस भी हो सकता है।
1: मैं जॉब करती हूँ।
0: अच्छा, आप जॉब करती हैं? अरे क्या बात है, आप सरकारी नौकरी में?
1: नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो सरकारी नौकरी में भी हमारे कुछ अपने जो शौक होते हैं, जैसे कोई डांस किसी को पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी बहुत अलग अलग चीजें होती है, किसी को खेल पसंद होता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या पसंद है?
1: मैम गाना तो मेरे को देखो इतना आता नहीं, मैं रेडियो जरूर सुनती हूँ, साथ साथ गा लेते हैं, पर वो वाली सिंगिंग नहीं।
0: अच्छा,
1: डांस का है तो वो शौक है, कभी कभी कर लेते हैं घर पे
0: जब थक के आते हैं आप, है ना, जॉब से ये अच्छी चीज, ये इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो हमें थोड़ा तरोताजा कर देती हैं थोड़ी देर के लिए, है ना?
1: हम
0: जो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थक के आते हैं वहाँ पे, जो जॉब की परेशानियां होती हैं, वो सब चीजों से हम जब जूझ के आते हैं ना, तो एक कुछ थोड़े से जो पल होते हैं ना, वो हमें ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल हम उसमें अपने मन का काम करें, है ना?
1: बिल्कुल मैडम जी।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: बारिश का मौसम है, मॉनसून सीजन है, तो मेघा रे मेघा रे।
0: अरे वाह, क्या गाना सुनाया आपने, बहुत बढ़िया गाना है। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं केकता शेख बोल रही हूँ, गुजरात सूरत से बात कर रही हूँ मैं।
0: अच्छा, सूरत से बोल रही हैं आप
1: जी।
0: तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है? पहले तो सूरत के बारे में बताइए कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज है जो हम देखने आ सकते हैं वहाँ आपके पास।
1: सूरत में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं।
0: अरे वाह,
1: बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं।
0: अच्छा, यहाँ वहाँ के कपड़े मशहूर हैं बहुत ज्यादा, है ना?
1: वहाँ के कपड़े बहुत मशहूर है।
0: अच्छा।
1: सब दूर दूर से हमारे एरिया में कपड़े खरीदने आते हैं।
0: अरे क्या बात बताई आपने, तो बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है।
1: वो जो सलमा मैडम बेचते हैं ना, नए नए आए, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: नेहा जी की, फिर पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन सबकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस सब तक पहुँचा देगा।
0: बिल्कुल, आप पहुँच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा?
1: मैडम मैं तो खाने में बिरयानी है, चीजें खा लेती हूँ। बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा, खिचड़ा हमारे में बहुत बनता है।
0: अच्छा अच्छा, तो चलिए और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी एक बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है।
0: अरे वाह, तो सब लोग साथ में रहते हैं।
1: जी, मेरी ऐसे शादी नहीं है, मेरी दीदी की हो गई है।
0: अच्छा अच्छा, आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: हेलो सहेली में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडीगार्ड का।
0: अच्छा अच्छा, आपको बॉडीगार्ड का गाना सुनना
1: है? कहानी है मुश्किल।
0: अच्छा ठीक है, तो आपके पसंद का हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से बोल रही हैं ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे ही बेटी का नाम भी आरती ही है।
0: अच्छा।
1: और वो आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया से गाना आया तो बहुत मजा आता है उसको।
0: अच्छा।
1: इसके लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा, तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी बेटी मन बुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती।
0: अच्छा।
1: और थोड़ी मन बुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी इसकी बर्थडे हुई गई।
0: अरे वाह, तो उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और
1: हाँ।
0: बताइए अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ, अब जब समय बिताती हैं तो किस तरीके से दिनचर्या?

0: रहती है।
1: मैडम उसको तो क्या है कि नक जो है ना वो रंगोना शायद भी उखड़ जाए ना तो नक पॉलिश रंगवा लेती। चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है।
0: अच्छा और तो अच्छा लगता है उसे तैयार होना अच्छा लगता है।
1: हाँ उसको तैयार होना, कपड़ा दो टाइम नहाना खाना तो जो मांगे वो देना,
0: बहुत बहुत अच्छी बात है।
1: शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता है।
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है अपने अपने आप से प्यार करना, है ना। अपने आप से प्यार करना सबसे पहले जरूरी होता है और बहुत अच्छी चीज है। वो सजती है, सवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत जरूरी है। ये
1: क्या है कि मेरा एक लड़का है बड़ा और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई वो दूर रहता है और अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका।
0: अच्छा अच्छा
1: आजीवा रोड पे।
0: अच्छा अच्छा बहुत बहुत आपको बताइया। और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
1: नहीं ये सब नहीं, उसको तो क्या है कि वो गाना रेडिया वो अच्छा। सब बहुत पहले से सुनती रहती है। वो सलमान खान बहुत अच्छा लगता है तो अच्छा। तेरे नाम का गीत सुनती है वो।
0: अरे वाह,
1: रोती है ना तो तेरे नाम का गीत सुना देते ना तो चुप हो जाए।
0: अच्छा यानी उसे संगीत पसंद है। संगीत पता है आपको बहुत अच्छी थेरेपी भी है।
1: हाँ अरे आपका जो प्रोग्राम आता है ना वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है, कोई खाना बनाना सीख लेते नए, कुछ बातें अच्छी सुनते तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाती।
0: बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए, आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे वाह,
1: सकीना है मेरा नाम, सकीना जी।
0: अच्छा, सकीना जी बोल रही हैं और बारामूला कश्मीर से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है।

0: तो बताइए अब अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है कश्मीर का पश्मीना। एकदम नाम जुड़ा हुआ है कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी मैम
0: जी। तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरे 3 बेटे हैं, तो एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े?
1: नहीं अभी छोटे हैं।
0: छोटे हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना?
1: जी मैम।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं, मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में जब कोई काम सब निपट जाता है घर का?
1: जब खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ, और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते ना, घर का काम खत्म करके बस ये करते हैं।
0: नहीं क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा आप इसे पश्मीना का क्या मतलब शॉल बनाती हैं कि कोई ऊनी कपड़े?
1: शॉल बनाती हैं।
0: शॉल बनाती हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहाँ तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब?
1: जी जी मैम, बहुत किस्में होती हैं पश्मीना की।
0: अच्छा अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: जी 2-3 किस्म के बनाती हैं।
0: अच्छा, तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं और देती हैं कि इसको?
1: नहीं हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज है, आप ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो, है ना?
1: जी
0: बहुत जरूरी है, अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसका आप अपने जिससे कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद कर सकें। तो बहुत अच्छी चीज़ है आप जो कर रही हैं, घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: जी मैं दिल वाले फिल्म है ना, उसका का कोई भी गीत मैं सुनना चाहती हूँ।
0: दिल वाले फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दें आपको, है ना?
1: जी जी मैम।
0: चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, तो सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद छाटवी से बोल रहे हैं।
0: तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज है जो हम वहाँ पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है, रसगुल्ला भी है, यहाँ का सिल्क भी विख्यात है। अच्छा। फेमस है, यहाँ का आम भी फेमस है।
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और सिल्क
1: फेमस है।
0: बहुत बहुत ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते हैं? आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ जी, हम हाउसवाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना, उसी में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलते हैं तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।
0: अरे वाह, आप लिखती भी हैं? आपको लिखने का शौक है?
1: लिखती भी है, इस बार भी हम भेजे।
0: अच्छा अच्छा।
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगी हुई है। मेरा घर में बहुत सारी चीजें जो पेड़ ओढ़ है फूल का, उसमें रात को रहते हैं, उन लोग को हम दाना देते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है,
1: सबको दाना देते हैं हम।
0: अच्छा, तो आप इस चीज को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियां लिखिए, पोयम लिखिए, कविताएं लिखिए, है ना? और बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का जू जू जू, जसोदा का नंदलाला, ब्रिज की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। जरा ध्यान से सुनिए, ये फोन आपके संदेशों को हम तक पहुँचाने के लिए मीठी सी धुन सुना रहा है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।
1: आओ सुंदर शहर बनाएं, डगर डगर पर वृक्ष लगाएं।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, एक मैसेज दिया आपने ना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही है, फालदाना का इंदौर से।
0: इंदौर से बोल रही है आप, हसीना मंसूरी? हाँ
1: जी।
0: बहुत अच्छा लगा। बताइए कि आपको क्या पसंद है, मुझे लग रहा है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी जहाँ तक मुझे लगता है।
1: जी बातें बहुत अच्छे करते हैं मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक है, रेडियो चलता रहता दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुन रहे, कभी मिस नहीं करते मैडम।
0: अच्छा।
1: और रेडियो मतलब खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
0: तो आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता तो उसमें लेटर भी शामिल किया करते थे मैडम, अगर वो लेटर जैसा अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग समीक्षा भी लिखते थे उसमें, रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग, पता नहीं ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी, सोने भी सुहागा हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
1: सिलाई करती हूँ मैडम मैं अधिकतर तो ज्यादातर, और घर में काम भी छुट्टी रहती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है,
0: ये तो बहुत जरूरी चीज है,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं?
1: ये गनी पैक का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें आप क्या मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप?
1: इसमें मशीन से रिपेयरिंग होता है, नहीं होता मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम।
0: अच्छा, आप हाथ से भी कर लेती हैं?
1: इसमें रफो होता है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है?
1: अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको? आवाज से लग रहा है मुझे
1: गाना गाना अच्छा लगता है ना मैडम, आके बताती हूँ।
0: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
1: जी जी, इनका नाम है फूल और अंगार, और मेरी फरमाइश भी यही है, और गाने के बोलने चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। ये सुना दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम बड़ागांव जिले में चंचल ढाकर बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं 10th क्लास पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, 10th में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
0: विज्ञान। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपके आपके शौक क्या है? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है, तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मुझको मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चलकर डॉक्टर बन जाऊं।
0: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं सलमान खान का।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम बरथी पोस्ट कर रही हूँ, जिला चंदौली से इमृति यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आपको क्या करना पसंद है?
1: मुझे, मैं घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ। मैं रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनती हैं, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: सभी प्रोग्राम अच्छा लगता है, और खासकर हमें सखी सहेली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग बातें करते हैं और हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको बहुत अच्छी बात है, ये आपको सखी सहेली अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप, जैसे कि आप गाने सुनती हैं, तो आपको कैसे, क्लासिकल गाने ज्यादा पसंद हैं या फिर आज के समय के?
1: नहीं, हर तरह के गीत पसंद है, नए हो, पुराने हो, भक्ति हो या हिंदी हो, मुझे हर तरह के गीत पसंद है। और रेडियो सुनना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। रेडियो से जो हमें कहीं से खुशी नहीं मिलती वो रेडियो से मिलती है।
0: ये तो सही बात है। अगर संगीत जो होता है ना, वो एक दूसरे से बांध देता है ना, और साथ ही हमारे सारी परेशानियों को थोड़ी समय के लिए सही लेकिन दूर कर देता है। और आप जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे संगीत पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम है जो रागों के ऊपर होते हैं, क्लासिकल संगीत के प्रोग्राम है, वो सब भी आप सुनती हैं?
1: जी, मैं हर तरह के गीत पसंद है और गाते भी हैं थोड़ा सा रेडियो के साथ में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। गाना जब हम गाते हैं ना, तो सोचिए अपने अंदर के एकदम ऐसा लगता है ना कि हम अपने अंदर का भी जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे अंदर तनाव था, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, रिलैक्स हो जाते हैं ना एकदम, ऐसा लगता है ना। तो आपको जो गाना सुनना है ना, वो आप गा के सुना दीजिए, बता दीजिए हमें।
1: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है।
0: बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारी आवाज आती, तो सुनवाते हैं आपकी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैम, मेरा नाम नाजमीन है, मैं गांव परपाल से बोल रही हूँ, जिला सारण के पास से।
0: तो आप बताइए, आप पढ़ती हैं या कुछ जॉब करती हैं या घर में रहती हैं, क्या करती हैं आप?
1: जी मैम, मैं घर में ही रहती हूँ, घर का ही काम करती हूँ।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो और ये बताइए, आपके घर में कौन कौन है?
1: हमारे घर में अम्मी है, अब्बू है, दो बहने हैं, भाई है, सब है हमारे घर में।
0: अच्छा, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके क्या शौक हैं?
1: मैं, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: और गाने के बोल उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में।
0: ओ ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बोल रही हैं? कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से।
0: अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करते हैं? आपको क्या करना पसंद है?
1: मैं घर में भी रहती हूँ और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बाकी का मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो जैसे कि पेंटिंग है ना, और सबसे ज्यादा कुकिंग में है मुझे इंटरेस्ट।
0: अरे वाह, बहुत
1: तो
0: अच्छी
1: मुझे
0: बात है।
1: तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है।
0: कौन कौन से तरीके का खाना बना लेती हैं आप?
1: जी मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ, और बाकी का ये है कि और भी चीजें मेरे पे आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांभर वगैरह। ये
0: अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में।
1: हाँ जी
0: तब तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार हैं, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के अच्छी अच्छी चीजें खिलाती होंगी।
1: हाँ जी, कहते हैं ना कि इंसान की जो पहली पसंद होती है ना, घर में जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना। अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस। मैंने अभी बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह, तो मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह।
0: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं,

0: आप खाने तरह तरीके की बना लेती हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाइए और किसी दिन हमें भी आप बुलाइए ताकि हम भी आएँ और आपने जो बताई हैं चीज़ें उनका हम भी कुछ लुत्फ उठा सकें क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, आपको तरह तरह की चीज़ें करनी आती हैं। तो बताइए मीनू जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: जी मैं दो कलिया मूवी का गाना सुनना पसंद करूंगी, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गीत है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

रहे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम गीतों भरी कहानी बस थोड़ी ही देर के बाद। ಇದು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕನ್ನಡ, ಸಮಯ 4:21.

भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और? बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासिक परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासिक परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहाँ से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लौट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामेटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई और फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विजू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विजू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विजू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विजू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विजू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विजू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विज्जू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूँ तुझे संभाल लूंगा, और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुँचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से बिज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर, मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली, उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहाँ तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजय को ही आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानी पूरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विजू ने शादी में। विजू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विजू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता, कारण तो नहीं पता लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भा...

विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पट्टी नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो विज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए विज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा। झूठा

0: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।
1: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3,00,000 से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन्स के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
2: ಇದು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕನ್ನಡ. ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ 4:31:45.

0: का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
0: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है, और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन। Union Minister of Railways and Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnav, and other dignitaries were also present on the occasion. Prime Minister Modi also inaugurated national highway projects, including a 4-lane greenfield, Delhi-Amritsar-Katra Expressway, and laid the foundation stone for the development of 6-lane greenfield, Southern Ludhiana Bypass. Earlier today, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at the Jind Railway Station in Haryana. The launch marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, Indian Railways has undergone a major transformation over the past 12 years and described the hydrogen train as a historic milestone that has given Jind a special place in India's history.
0: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा